डक्टर, मैले उसको ओइल पावर जोगाउन धेरै ट्राई गरिसकेँ, म हार खाइसकेँ। आई एम सो सरी डक्टर।

0: Choice FM 90.4 MHz.
1: सोल्टा सोल्टिनी साइनो थापाएपछि नम्बरीलाई के चाहियो?

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-24-6670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।